बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम। भगवती सिमरक गुरु नानक लईं ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंदन सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइया जिस डिठ सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरियाए करनो निध्यावताए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री

बम तहां तहां रश आरे आए तम देग तेग फतेह बिरद के पैज पंथ के जेतम श्री

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जिह रूप रंग अर रेख पीख को कह ना सकत केह अचल मूरत अनभाओ प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साह साहाण गणिजै त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्वय सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत जिह अमृत बचन बाणी साधु जान जप है कार विचित चाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार संसार सफल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गति जीत है जम लोक पतित जे प्राणी हर जान सेव गुर ज्ञान रती रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ घर मुन वंश है जाकी शरण सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारण तरण प्रभ के चरण मन माहित आन सगल तीरथ मज्जन इसनान हर दिन हर सिमरन मेरे भाई कोट जन्म की माल लह जाई रहाओ हर की कथा रिद माहे बसाई

जाकै हृदय वसै भगवान, कहो नानक सेई जन पूरे, जिना प्राप्त साधु तूरे। सतगुर सच्चा नाउ गुरमुख जानिऐ, साध संगत सच थाउ सबद वखाणिऐ। दरगह सच नियाउ जल दुध छाणिऐ, गुर सरणी असराउ सेव कमाणिऐ। सबद सुरत सुन गाउ अंदर आणिऐ, तिस कुरबाणै जाउ माण निमाणिऐ। सबद सुरत सुन गाउ अंदर आणिऐ, तिस कुरबाणै जाउ

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बिलावल महला चौथा पड़ताल कर तीरवा बोलो हो भैया राम नाम पतित पावन हर संत भगत तारनो हर भर पुरे रहया जल थले राम नाम नित गाइए

मोगे पतत उधारिया तेरे पद पादक चरण लेव लागी रहे दया कै दयाल मोहे पतत उधारिया जेता समुंद सागर नीर भरिया

रंग परंग नेकन जापन करतबा जिया इंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे वस तेरा कर पला।

0: नानक दासन दास तुदे आ गए बिनवता।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगे।

पाणी पिता माता धरत महत दिवसरा द्वैदाई दाया खेल सगु जगत चंगिया।

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपार सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सिरजन हार सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातार हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारण हार हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचार तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समान एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज विडाण तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर ना जान तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाण जो सेवह जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरवाण हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भय जिन हर त्याया जी तिन तोटी जम की फासी जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जी तिन का भौ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन वल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंत तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंत तेरी अनक करह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंत तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त जी कर किरिया खट कर्म करंत से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंत तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निह चल करता सोई तुद आपे भाव सोई वरतै जी तू आपे करहै सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सहका जान होई आसा महला चौथा तू करता सच्यार मैडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करह तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल जिसन तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए तू कर कर वेख जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहल तेत सरवरड़ पहिले निवासा पानी पावक तिन्ह किया पांक जो मुह पग नहीं चाल हम देखा तह डूबियले मन एक न चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया प्राणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा
ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀ ਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤ ਨਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं पव्यो बाच बेनती चौपई। हमरी करो हाथ द रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपार। हमरे दुष्ट सब तुम काव हो, आप हाथ दे मोहे बचाव हो। सुखी वस मोरो परिवार, सेवक सिख सब करतार। मोर अच्छा निज कर दे करिय, सब वैरन को आज संघरिय। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उवरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जो करियो रक्षा। राख लिहो मोह राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जक्षण उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बध कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचरे

सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, सांतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब धार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह भेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, किह विद सजा प्रथम संसार। एक रूप अनूप सरूपा, रंग भयो राव कही भूपा। आंडज जीरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर अकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आदि जुगाद स्वरूप सुजंपव। आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दोस्त जीते उठवा त्युत पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक वार त्याय है, ताकि काल निकट नह आय है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल। कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो, ताके ताप तनक मह हार हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शह स्व सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताहे उवार।

भैया पाई गहे जब ते तुम रे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने ओ सिमरत शास्त्र वेद सब है बह भेद कहे हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहे ओ।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया शब्दो तां गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनहु विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे घर तां तेरे सब किश है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दियाँ एह वडियाइया कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो बाजे पंच शब्द तित घर सुभागे घर सुभागे शब्द बाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंट कमारिया तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ।

राख पिता प्रभ मेरे, मोहे निर्गुण सब गुण तेरे, पांच बिखादी एक गरीबा, राखो राखन हारे।

कार कार हारियो अनक बहु भांति, छोड़ह कतहु नाहीं। एक बात सुनता की ओट, साध संग मिट जाही। कर कृपा संत मिले मोहे, तिन ते धीरज पाया। संति मंत दियो मोहे निरभउ, गुर का शब्द कमाया। जीत लए ओए महा बिखादी, सहज सुहेली बाणी। कहो नानक मन भया परगास, पाया पद निरबाणी। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी। ना तुम डोल हो ना हम गिरते, रख लेनी हर मेरी। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गुरवास ना परियारे। दर्शन प्यासी दिन सुरात,

जियो तपत है बारो बार, तप तप खप बहुत बेकार। जय तन बाणी बिसर जाय, ज्यों पक्का रोगी बिल लाए। जियो तपत है बारो बार, तप तप खप बहुत बेकार। जय तन बाणी विसर जाय, ज्यों पक्का रोगी बिल लाय। बहुता बोलन चखन होय, बिन बोले जाने सब सोय। रहाओ जिन कान कीते अखी नाक, जिन जिहवा दिती बोले तात।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर राम दास राख हो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर राम दास राखो सरनाई। सो कहो टल गुर सेविया, एहनस सहज दर्शन परसिया। गुरु कै जन्म मरण दुख, होवै सिफत खसाम दी। नूर अरसों कुरसों, तुद डिठे सच्चे पात सहा। मल जन्म जन्म दी, सजन सच्चा पात साहु सिर साहांद। जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे। सजन सच्चा पात साहु सिर साहांद। जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे साहो। सतनाम

सलमाना सिर्फ शरीयत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू साला ही साला अंदर संडूपे अपार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अगर वास बहकार जोगी सुन त्यावन जे

लख तप प्रतीर्थां सहजोग बेबान, लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण, लख सुरती लग ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण, जिन कर

0: छतर न पतर न चौर न चावर, बैती जात रिधे ना बिचारो, रथ न असव न गज सिंहासन, छिन में त्यागत नांग सिधारो, सूर न वीर न मीर न खानम, संग न कौ दृष्ट निहारो, कोट न ओट न कोस न छुट्टा, करत विकार दहु कर चारो, मित्र न पुत्र कतर साजन साख, उल्टत जात बिरह की शारो, दीन दयाल पुरख प्रापूरन, छिन छिन सिमरो अगम अपारो, श्रीपत नाथ शरण नानक जन, हे भगवंत कृपा कर तारो, हे भगवंत कृपा कर तारो।
1: प्राण मान दान मग जोहन, हित चीत दे ले ले पारी, साजन सैन मी सुत पाई, ताहूं ते लै रखी निरारी, तामन पावन कूरक मामन, एह बिद करत औ तन जारी।

चंचल संग सगल बिदहारी पस पंखे बिरख स्थावर बहुबिध जोन परम्यो अत पारी छिन पचसा नामनी सिमरू दीना नाथ प्राण पसारी खान पान मीठस भोजन।

ब्रह्मा दिक शिव संद मुनीश्वर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मनिंदर खोजते गोरख तरन गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख देव अर दानव एक तिल तां को मर्म ना पावत प्रिय प्रप्रीत प्रेम रस भक्ति हर जन तां कै दर्श समावत तिसह त्याग ज्ञान को जाचें मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूड सिमर सुख दा

0: तर पर दुख हर सर्वरो खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत सर तृष्णा, बिनस जाहे हर नाम उच्चारी। इष्णान दान पापन सुच किरया, चरण कमल हृदय प्रभ तारी। साजन मीत सखा हर बंद जी, तान प्रभ प्राण उदारी। ओट गही स्वामी समरथ, नानक दास सदा बलहारी।
1: आवधि कट्यो ना जात, प्रेम रस चरण कमल संग। दामन बंध्यो ना जात, विदे मन दर्स मग। पावक जर्यो ना जात, रहो जन तूरे लग। नीर ना साक्ष बोर, चले हर पंथ पग। नानक रोग दोख अग मोह, छिदे हर नाम खग।
2: उद्दम कर लगे बो पाटी, बिछरे अनेक शास्त्र बो खटुआ। पसम लगाए तीरथ बो प्रमते, सुखम दे बंदे बो जटुआ। बिन हर पयन सगल दुख पावत, जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ। पूजा चक्र करत सोमपाका, अनेक पात थाटे कर थटुआ।
3: सोई पुरख तन करता, कारण करतार करण समर्थो। सतगुरु तन नानक, मस्तक तुम तरयो जिन हथो। ता तरयो मस्तक हथ सहज, अम्यो उठो शज। सुर नर गन मुन बोयो अगाजे, मारियो कंटक काल गरज। तावत दियो बरज, पंचपूत एक करे। राख दे समझे

संसार सफल गंगा गुरदर्शन परसन परम पवित्र गते जीते है जम लोक पतित जे प्राणी हार जन सेव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कर।

निर्मल नाम सुधा परपूरन, शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर, गहर गंभीर अथाह आत बड, सुपर सदा सब बिदरत नागर, संत मरा

रहाओ नारपात राजे रंग रस माणहि बिन नावे पकड़ खड़े सब कलघा धर्म राय सिर डंड लगाना फिर पछताने हाथ फलघा।

शरणागत पुरख प्रतिपल घा दर्शन संत देहो सुख पावा प्रभ लोच पूर जान तुम घा।